आवाज की दुनिया के दोस्तों, महक में आज 17 मई के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसे ही महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं सुखदेव जसवाल। आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए वहीदा रहमान जी के गाने, उनकी फिल्मों से लिए हुए। वहीदा रहमान जो अपनी तरह की अलग तरह की अभिनेत्री रही हैं हिंदी फिल्मी दुनिया की। हम श्रद्धांजलि देंगे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी को और हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर को। और कुछ बातें करेंगे भारत के पहले लिटरेचर में नोबेल प्राइज पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। और आपकी फरमाइश पेश करेंगे। फरमाइश के लिए बहुत ही आसान है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02-9816-2777 02-9816-2777। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा सुन सकते हैं ऑनलाइन RRR.org.au पे, लिसन ऑनलाइन प्ले बटन। और इसी तरह से अपने मोबाइल पर भी, और मोबाइल पर सुनने के लिए एक और तरीका है, अपने फेवरेट ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके आप RRR चूज करिए और आप जहां भी हो अपने दोस्त मोबाइल के साथ सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक। पूरे कार्यक्रम में समाचारों पर बातचीत होगी,

वहीदा रहमान, जन्म हुआ उनका अब्दुल रहमान और मुमताज बेगम के घर 3 फरवरी 1938 को चंगलपेट तमिलनाडु में। वो 4 बहनें थीं, चारों को बचपन से ही भरतनाट्यम की शिक्षा दी गई। पिता विशाखापट्टनम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, ICS ऑफिसर थे। उन दिनों ICS होता था जो अब बदलकर IAS हो गया है। वहीं उनकी स्कूली शिक्षा भी हुई। वहीदा रहमान जी का अपना सपना, जिंदगी में हम जो करते हैं वो हमारे कई बार बस में नहीं होता, और कई बार बस में होने के बावजूद हमारी कोई उस पर बस नहीं चलता। वहीदा रहमान जी का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन 13-14 साल की उम्र में ही पिताजी गुजर गए, और उनके गुजरने के बाद परिवार चलाने के लिए काम करने पर मजबूर हो गईं। भरतनाट्यम की कला के कारण उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। 10 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया, उस समय के वाइसरॉय सी राजगोपालाचार्य के सामने, और फिर तमिल फिल्म अली बाबम 40 थिरुदर गलुम में नृत्य का काम मिला, और भी फिल्मों में उन्हें डांसर का काम मिला। 1956 में NT रामाराव के साथ हीरोइन आई फिल्म थी जय सिम्हा।

गुरुदत्त ने वहीदा रहमान का काम देखा तमिल फिल्मों में स्टेज पर, उन्हें बहुत पसंद आया उनका काम। बॉम्बे लेकर आए, फिल्म सीआईडी में कामिनी का रोल दिया गया, गाना फिल्माया गया कहीं पे निकाहें कहीं पे निशाना, जो आप सुन रहे हैं, और सबकी नजरों में आए वहीदा रहमान। लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि वहीदा रहमान जी ने कंडीशन रख दी थी कि वो कॉस्ट्यूम जो भी पहनेंगी फिल्म में वो उनकी पसंद का होगा, अगर उनको पसंद नहीं होगा तो वो नहीं पहनेंगी। और उनसे कहा गया अपना नाम बदल लीजिए, वहीदा रहमान कुछ ठीक नहीं लगता हीरोइन के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा मैं नाम नहीं बदलूंगी।

गुरुदत्त जी का साथ सीआईडी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाद उन्होंने उनके साथ यादगार फिल्में की, प्यासा, कागज के फूल, चौदवी का चांद, साहिब बीवी और गुलाम। फिर उनकी मुलाकात हुई देव आनंद साहब के साथ, और देवानंद साहब के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की, जैसे कि बात एक रात की, काला बाजार, बाजी, प्रेम पुजारी, और कौन भूल सकता है मैग्नस ओपम, जिसे विजय आनंद साहब ने डायरेक्ट किया देवानंद साहब के लेकर और वहीदा जी को लेकर, जिसकी भी एक कहानी है जो आगे चल के आपको बताऊंगा। और मशहूर हो गई वो बहुत ही हिंदी फिल्मी दुनिया में।

और सच हुए सपने वहीदा रहमान जी के और सच हुए सपने उनके हीरोज के और उनके डायरेक्टर्स के और इतने सच हुए कि सब बड़ी बुलंदियों पर पहुंच गए और एक हीरो तो ऐसे थे उनके जिनका नाम था कमलजीत और उनका ये था पर्दे का नाम और उनके असली जो नाम था वो ये नहीं था उनका नाम जो रियल लाइफ में था और 1955 या 1954 में फिल्म आई थी पर शगुन जिसमें वो हीरो थे और 1974 में उन्होंने उनसे शादी की और उनका असली नाम था शशि रेखी तो कमलजीत से उन्होंने शादी की तो उनके कमलजीत जी के सपने तो पूरी तरह से सच हो ही गए।

और खयाम साहब का था संगीत इस गाने में, और क्या गाना है, आज तक मशहूर है। और फिर साहिब बीवी और गुलाम फिल्म आई, साहिब बीवी और गुलाम बनाई किसने, वही जो उन्हें फिल्मों में लेकर आए गुरुदत्त साहब। और इस रोल के बारे में कहा जाता है कि गुरुदत्त साहब उन्हें इस रोल में, इस फिल्म में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा इस फिल्म की हीरोइन है मीना कुमारी और ये रोल तुम्हारे लेवल का नहीं है। कहा जाता है कि वहीदा जी ने कहा कि नहीं, ये रोल मैं ही करूंगी और मैं ये फिल्म करूंगी, और गुरुदत्त जी को मानना पड़ा। और क्या फिल्म की वहीदा रहमान जी ने लोग साहिब बीवी और गुलाम के लिए चाहे और किसी को याद करते हों या ना करते हों, करते ज़रूर हैं वहीदा रहमान जी को। और उनका ये बेहतरीन गाना जो बहुत ही मशहूर हुआ वो पेश है आपके लिए, और ये है भंवरा बड़ा नादान। और यही नहीं, वहीदा रहमान जी को इस फिल्म के लिए जो उन्हें दी ही नहीं जा रही थी, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया, उससे नवाजा गया 1962 में।

0: 2:25 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का. कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा वहीदा रहमान जी की फिल्मों के गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर. और अब बहुत ही अच्छा समय है अगले दो मिनट के लिए अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का. नंबर है 02-9816-2777 02-9816-2777.
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef's specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsored the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: So here's a question. Where will Giant Steps take you this Saturday? And the answer? Straight to the Giant Steps Greenhouse Market, located in the grounds of the old Gladesville Hospital. The charity-run event, hosted by Giant Steps Australia, operates a school, a post-school service, and a range of other services supporting children and adults with autism spectrum disorder. So, take a leap and stride along to these colourful floral markets this and any Saturday between 9 and 12 noon and soak in the beauty of what's on offer. Free parking and entry are from Punt Road, Gladesville via the bottom gate. Then head for the Norton Manning Drive. For inquiries, go to giantsteps.net.au.
4: If you love listening to 2RRR, why not consider becoming a financial member? 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of radio broadcasting, including production, announcing, training, administration, and technical assistance. For further information, call our office on 02-9816-2988 or download an application form at 2RRR.org.au.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर. आज एक बार फिर वहीदा रहमान जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में. और अगला गाना जो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ वो एक फरमाइशी गाना है जिसकी फरमाइश की है लक्ष्मी ने. और ये गाना है, बहुत ही एक प्यारा गाना है ये और बहुत ही एक दिल लुभाने वाला गाना है. और ये है गुरुदत्त जी की फिल्म प्यासा से. प्यासा में बहुत ही दिलचस्प गाने थे, एक के बाद एक अच्छे अच्छे गाने थे. वक्त जो जिंदगी के बारे में गाना था कि हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, बहुत ही प्यारा गाना था. और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने थे और बहुत ही अच्छा गाना है ये, आज सजन मोहे अंग लगा लो. फिल्म प्यासा, गुरुदत्त जी ने पहली फिल्म बनाई थी वहीदा जी के साथ. और ये गाना साहिल लुधियानवी जी ने लिखा था, एस टी बर्मन साहब ने इसका संगीत दिया था और बेमिसाल आवाज़ है गीता दत्त जी की.

यहाँ सिडनी में बहुत सारे शो होते हैं, लेकिन कुछ शो ऐसे होते हैं जो यादगार रहते हैं, और ऐसे ही यादगार शो करते हैं यहाँ के मशहूर कम्युनिटी आइडेंटिटी केदार जी। केदार जी बहुत से शो करते हैं, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन आज बात करने का मौका है एक जो शो वो कर रहे हैं, गाता रहे मेरा दिल सीजन टू, और ये हो रहा है 4 जुलाई को रीजेंसी सेंटर ओबन में। और इसमें केदार जी तो हैं ही, लेकिन साथ में उनके उनके साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, जिसके बारे में वो खुद ही बताएंगे।

0: Where else do you get great dining with everyday specials? At the North Ryde RSL. That's where. With the Riverviews Bar and Dining, the Marble Bar and Cafe, the Green Bar, the Downstairs Bar, and the House of Tong. And not forgetting the free live entertainment every Friday and Saturday nights. Plus, you can catch top starring acts in the auditorium. It's the North Ryde RSL, where members enjoy regular specials, giveaways, and win great prizes. Station sponsor, the North Ryde RSL on Pittwater Road. More than a club, it's your community.
1: Here's an opportunity to get inspired and implement sustainable practices at your own pace and within your home. Hunters Hill Council has partnered with Good for the Hood to offer residents free access to a series of sustainable living workshops as part of the At Home program. It provides residents with the chance to participate in free webinars, access valuable information and resources, and engage in live Q&A sessions with sustainability experts. Go to goodforthehood.com.au/huntershill.
2: 1, 2, 3, 4!
3: Hey John, Paul, George and Ringo. Did you know that 2RRR is your local sound to the world? And we have some competitive sponsorship packages if you would like to promote your business on air. So get in touch by emailing office at 2RRR.org.au. And I'm not the Eggman because the walrus was Paul.
4: आखिर संदेश अब तक पहुंच ही गए और जब मुश्किल थी कठिनाई थी वो दूर हो गई और आइए चलें कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं हसरत जयपुरी साहब के गीतों के इस कार्यक्रम को और हसरत जयपुरी साहब ने जो गीत लिखे उन्हें आवाज़ें थी मुकेश साहब ने लता जी ने और अन्य कई गायकों ने रफ़ी साहब ने तो दी ही और बहुत ही मशहूर किया उनको एक फिल्म आई थी तीसरी कसम वहीदर रहमान जी और राज कपूर साहब बहुत ही एक आर्टिस्टिक फिल्म थी लेकिन बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा नहीं चली लेकिन क्रिटिक्स ने बहुत पसंद की बहुत तारीफ की इसकी और इस फिल्म में मुकेश जी की आवाज़ में एक गाना है दुनिया बनाने वाले बहुत ही प्यारा गाना है 1966 में बनी थी ये फिल्म तो पेश है आपके लिए तीसरी कसम फिल्म का ये बेहतरीन गाना हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ

मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी हल हो रही है, तो पेश है आपके लिए एक फरमाइशी गाना, और ये गाना है एक फूल चार कांटे से।

इस रुकावट के लिए भी आपसे माफ़ी चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि ये रुकावट जो है जल्दी ही आप के लिए दूर कर दूंगा और कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकेंगे। और आज बहुत ही अचंभे की बात है कि अपने आप ही ये सब कुछ होने लगा है और ये रुकावट बीच में आ गई, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से ये प्रॉब्लम ना आए और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और आप अपनी पसंद फिर भी भेज सकते हैं महक 2RRR 88.5 FM पर। हमारा फ़ोन नंबर है 02-9816-2777 02-9816-2777 02-9816-2777 और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गाना आप तक लाने की। और ये गाना हमें बीच में ही रोकना पड़ा और जैसा मैंने कहा उसके लिए बहुत बहुत खेद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रुकावट किसी तरह से दूर हो जाए और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और हर तरह से आपकी फरमाइश जो है आप तक ला सकें। कभी कभी यहाँ जो होता है किसी को कुछ समझ नहीं आता कि होता क्यों है और बस हो जाता है, फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है, उसके जो है कोशिश करनी पड़ती है कि किसी तरह से ये जो रुकावट है ये दूर हो जाए। और यही कोशिश यहाँ चल रही है स्टूडियो में और उम्मीद है कि जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा और आप तक आपका गाना और आपकी पसंद और ये कार्यक्रम सही तरीके से पहुँच सकता है, पहुँच जाएगा। और हमारा नंबर है 02-9816-2777 02-9816-2777। और आज कोशिश जारी है मेरी आपके लिए वहीदा रहमान जी के फिल्मों के गाने पेश करने की और उम्मीद है सही तरीके से हम अब ये गाना क्योंकि बीच में ही रुक गया था और ये फरमाइशी गाना भी है तो पेश है ये गाना एक बार।

बहुत ही प्यारा गाना। और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो उनकी शुरू की फिल्मों में से है, वहीदा रहमान जी की। और एक फिल्म आई थी उनकी देवानंद साहब के साथ, 16 साल, ये 16 साल से है ये प्यारा सा गाना, महक 2RRR 88.5 FM पर, और इसे पसंद किया है राज ने।

तमिलनाडु में टीवीके सरकार बन गई है. टीवीके एक नई पार्टी है जो कि अभिनेता से नेता बने विजय जोसेफ विजय की पार्टी है. कांग्रेस भी उसमें साथ हो गई है. अभिनेता से नेता बने जोसेफ थलपति विजय, जैसे मैंने कहा, अब तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा पावर सेंटर माना जा रहा है. डीएमके, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और बीजेपी के लिए टीवीके तमिलागा वेत्री कजगम, यह पूरा फॉर्म है तमिलागा वेत्री कजगम टीवीके, अब एक बड़ी चुनौती बन गई है. बीबीसी हिंदी में 13 मई को समाचार आया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है. कारण है, एक बार फिर पेपर लीक हो गया है. 2017, 2021, 2024 में भी ऐसा ही हुआ था. इस साल पेपर लीक होने से 22 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा जो दी थी वो बेकार हो गई है. अब इन सब की मेहनत और पैसा, परीक्षा में बैठने और पढ़ाई और समय बर्बाद सब हो गया है. सवाल, इसका जिम्मेवार कौन है? 5 सालों में ये चौथी बार पेपर लीक हुआ है. अगर अथॉरिटीज एग्जाम भी नहीं करवा सकती तो एग्जाम घोषित करने का क्या मतलब है? और कोचिंग ऑपरेटर्स को भी इसमें माना जाता है, वो भी दोषी हैं, उनकी भी मिलीभगत है इस में. लेकिन हमारी किसी बात में मिलीभगत नहीं है, केवल आपको गाने सुनाते हैं और वो भी आपकी पसंद के, जैसे कि ये अगला गाना है और ये लता की पसंद का है, फिल्म है गाइड. आज फिर जीने की तमन्ना है.

0: Radio 2RRR has dedicated itself to working with youth through the broadcasting medium and with assisting adults who are on their rehabilitation journey. And this would not be possible without the support of the Bendigo Community Bank North Ryde. Support the bank that supports your community. Station sponsor Bendigo Community Bank North Ryde on Cox's Road.
1: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज महक में जिसमें आपके लिए पेश कर रहा हूँ वहीदा रहमान जी की फिल्मों के गाने. आइए वहीदा रहमान जी की फिल्मों के गानों से थोड़ा सा रोक लेते हैं और फिर वापस आएंगे उन तक.

जन्म 15 मई 1907, पिता रामलाल और माँ रल्ली देवी के घर लुधियाना में। पिता उनके जन्म से 3 महीने पहले ही गुजर गए थे। उनके पिता के भाई, बड़े भाई यानी उनके ताया चिंतराम ने सुखदेव थापर का लालन पालन किया। 8 सितंबर 1928 को ब्रिटिश रूल के विरुद्ध स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई और सुखदेव थापर उसके सदस्य बने। 1921 में नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। सुखदेव थापर ने नौजवान भारत सभा नाम का संगठन खोला, जिसका उद्देश्य पंजाब के युवा छात्रों को पंजाब के मजदूरों और किसानों के बीच काम करने का उत्साह पैदा करना था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मौत के बाद सुखदेव थापर ने उनकी मौत का बदला लेने के लिए कार्य योजना बनाई। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ इसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। इस मामले में 1929 में वो गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने पर उन्हें प्रमुख आरोपी बनाया गया। 17 दिसंबर 1928 को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेपी सॉन्डर्स की हत्या में उनका अहम हिस्सा था।

1929 के लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्राउन वर्सेस सुखदेव एंड अदर्स में वो पहले नंबर पर आरोपी थे। सेंट्रल असेंबली हॉल न्यू दिल्ली में बम विस्फोट में जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ, उन्हें भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। तीनों के अंतिम संस्कार उन्हें छुपाकर सतलुज के किनारे किए गए। हुसैनीवाला में नेशनल मार्टायर्स मेमोरियल बनाया गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में। अगस्त 1987 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जुड़ा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज स्थापित किया गया उनके सम्मान में।

उनके जन्म के शहर लुधियाना में उनकी याद में अमर शहीद सुखदेव थापर इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाया गया है। द ट्रिब्यून की मुख्य समाचार थी, पहले पन्ने पर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एग्जीक्यूटेड, नो लास्ट इंटरव्यू विद रिलेशंस, डेड बॉडीज सीक्रेटली डिस्पोज्ड ऑफ। शत शत नमन है सुखदेव थापर को और भगत सिंह और राजगुरु को।

आइए चलें वापस वहीदा रहमान जी की फिल्मों के गानों की ओर और अगला गाना जो वहीदा रहमान जी की फिल्म का मैं लेकर आया हूँ वो है डॉक्टर पारेख और शकुंतला जी की पसंद का तो पेश है आपके लिए वक्त ने किया क्या सितम हम रहे न हम तुम रहे न तुम कहते हैं कि ये फिल्म गुरुदत्त जी की अपनी कहानी पर ही थी अपने जीवन की कहानी पर जो भी है फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी और हिंदी फिल्मी दुनिया का एक नसीहत मानी एक मिसाल मानी जाती है

12 मई को जनसत्ता समाचार पत्र में समाचार आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 मई से विदेश यात्रा पर हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट से होकर जाती हुई ये यात्रा नेदरलैंड और नॉर्वे और उसके बाद इटली और स्वीडन भी होगी और पांच देशों की ये यात्रा है। इस यात्रा में जहां मेन फोकस ट्रेड और एनर्जी पर होगा, वहीं यूएई में वो यूएस इजराइल और ईरान के बीच कुछ युद्ध के मुद्दे पर भी बातचीत होगी और इसके बारे में और जो समाचार आए वो ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है शुक्रवार को यूएई के अबू धाबी में पहुंचकर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की, जिन्होंने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की, कहा कि ये क्षेत्र ऊर्जा और खास खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम है और इसकी स्थिरता और शांति भी अहम है। यूएई भारत के लिए $30 मिलियन $30 मिलियन का तेल जो है बैरल्स जो है तेल की, वो 30 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल की रखेगा। यूएई के बाद प्रधानमंत्री एम्स्टर्डम पहुंचे दो दिनों के लिए, डच प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन से बातचीत की। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने चोल डायनेस्टी, जो जिसे चोला डायनेस्टी भी कहते हैं, चोल डायनेस्टी के 11वीं सदी की 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की थालियां, जिन पर तमिल भाषा में लिखा हुआ विवरण है उस समय का, भारत को वापस सौंपी। ये प्लेट्स सम्राट राजा चोल प्रथम के समय की हैं, जिन्होंने 985 CE से कॉमनेरा से 1014 कॉमनेरा तक राज किया। और हम कोई राज नहीं करते हैं, केवल आपकी फरमाइश पेश करते हैं। हर इतवार महक 2RRR 88.5 FM पर सुनील दत्त जी के साथ उनकी एक फिल्म आई थी मुझे जीने दो, इसे एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म कह लीजिए, क्लासिकल फिल्म कह लीजिए माना जाता है, लेकिन इसका गाना जो वहीदा जी पे फिल्म आ गया था अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था। पेश है आपके लिए मुझे जीने दो।

चीन में हो रही आर्चरी वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का की रिकर्व टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कुमकुम मोहाद और उनकी टीम ने चीन की बराबरी करने के बाद शूट ऑफ में 5-4 से चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता। ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया पर देने वाली सेना की अफसर समाचार जिन्होंने दिया था, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय सिंह पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT स्थापित कर दी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये भी कहा है कि 4 हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर 14 मई 2025 को FIR दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज तुषार मेहता ने कहा, शाह तो कर्नल सोफिया कुको की प्रशंसा, माफ कीजिए, ये जो तुषार हैं, ये तुषार मेहता, ये जो है सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि शाह तो कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करना चाहते थे। CJI सूर्यकांत ने जवाब में कहा कि ये ऐसी कैसी प्रशंसा है, एक राजनेता के रूप में वो महिला अधिकारी की प्रशंसा करने का तरीका खूब जानते हैं। तंज था ये, और ये बयान केवल एक सैनिक अधिकारी के लिए नहीं स्वयं सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक है, ऐसा कहा जज साहब ने। और अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वहीदा रहमान जी का, वो है फिल्म खामोशी का। फिल्म खामोशी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी इसको बनाना नहीं चाहता था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन कहते हैं कि वहीदा रहमान जी ने जोर दिया और उनके कहने पर यह फिल्म बनाई गई। उनको कहा गया कि यह फिल्म चलेगी नहीं, और ऐसा ही कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं चली लेकिन इसके गाने बहुत चले। और ऐसा ही एक गाना है लता जी की आवाज़ में, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू।

हिंदुस्तान टाइम्स में समाचार आया और ये समाचार आया कि प्रधानमंत्री जी के निवास पर सीबीआई डायरेक्टर के पद के लिए हाई लेवल कमेटी की मीटिंग है। इसके लिए इस कमेटी में 3 सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, और प्रधानमंत्री। 3 लोगों की कमेटी है जो सीबीआई डायरेक्टर चुनती है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद प्रेस को बताया कि उन्होंने एक कड़ा नोट ऑफ रिजेंटमेंट दाखिल किया है और इस नोट के कारण बताए, बार बार मांगने के बाद भी जो कैंडिडेट थे उनकी 360 डिग्री रिपोर्ट्स उन्हें नहीं दी गई। मीटिंग में ये 69 रिपोर्ट्स दी गई, जो कि मीटिंग के समय इनकी जांच नामुमकिन थी। जानबूझकर ये रिपोर्ट्स ना दिया जाना बिना किसी कानूनी कारण के सिलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाना है और आपके पसंद किए कैंडिडेट पर मोहर लगाना है। मैं ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। आई कैनॉट एबडिकेट माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बाई पार्टिसिपेटिंग इन अ बायस्ड एक्सरसाइज। लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट अ रबर स्टैम्प। करंट सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को 1 साल की और एक्सटेंशन दे दी गई है और हम यहाँ समय की एक्सटेंशन नहीं दे सकते क्योंकि समय जो है वो बहुत ही सीमित होता है यहाँ पर। और अगला गाना जो है वो है एक फरमाइशी गाना जिसकी फरमाइश की है शांति ने। तो पेश है आपके लिए फिल्म प्रेम पुजारी का ये बेहतरीन गाना।

बहुत ही प्यारा गाना ये प्रेम पुजारी फिल्म का, और प्रेम पुजारी फिल्म का एक और गाना बहुत ही अच्छा था और वो फिर कभी आपको सुनाऊंगा, फूलों के रंग से दिल की कलम से। और बात करते हैं आज हमारी जो जन्मभूमि है उसकी बातें, कुछ इधर की कुछ उधर की। पंजाब में बोर्ड की दसवीं कक्षा के रिजल्ट्स में 2072 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आए, जिनमें से 220 छात्राएं हैं। जी हाँ, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नंबर पा रही हैं, और टॉप जो छात्रा है वो भी फरीदकोट से छात्रा ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील की तेल बचाएं सोना ना खरीदें कि कथित बीजेपी नेताओं द्वारा अनदेखी भी की गई और कई जगह उसको माना भी गया। पंजाबी सिनेमा की एक्ट्रेस रुपेंद्र कौर गिल ने कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर खूब अपना जलवा बिखेरा। सफ़ेद रंग के एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट में स्कर्ट और सलवार दोनों एक साथ पहनकर, लहराता दुपट्टा लेकर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी बीजेपी सरकार के मुकाबला हाईकोर्ट में वकील के कपड़े पहन कर गई। चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी सरकार बंगाल के लोगों की रक्षा करने में फेल हुई है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा। कृपया बंगाल के लोगों की रक्षा करें, ये कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। और भिवानी के एक 28 साल के युवक विशाल की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई और वो लाइफ सपोर्ट पर थे, पीजीआई एमएस रोहतक में। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित किया, परिजनों ने उसके अंगदान करने का जो है मंजूरी दी, और नतीजा आर्मी की मदद से लिवर पहुंचा आरआर हॉस्पिटल दिल्ली, किडनी पहुंची चंडी मंदिर अस्पताल चंडीगढ़ के पास जो है, और हार्ट और कॉर्निया समेत 7 लोगों की जानें बचाई विशाल ने। और बातें हमारी कर्म भूमि की, अपनी पानी बिजली और पानी बिजली की खपत के कारण, कि बहुत भारी खपत के कारण डाटा सेंटर्स जो आप जानते ही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आवश्यक हैं, बदनाम हो गए हैं। सिडनी के लेन कोव वेस्ट में $800 मिलियन की लागत से 81 मेगावाट की बिजली की खपत वाला डाटा सेंटर लगाने का प्लान है। 28 मीटर ऊंचे इस विशालकाय निर्माण के करीब 160 मीटर दूर पर ही एक स्कूल है, जो इस डाटा सेंटर से आने वाली आवाज़ शोर से प्रभावित होगा। स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थी और पास के निवासियों ने इसका भारी विरोध किया है। जून 12 से जुलाई 5 तक 2026 के होने वाले T20 वुमेन्स ICC टीम घोषित कर दी है गई है ऑस्ट्रेलिया की, सोफी मोलिनो होंगी उसकी कैप्टन। और 2026 के यूरोविजन में ऑस्ट्रेलिया की डेल्टा गुडरम की आवाज़ गूंजी, लेकिन सफलता नहीं पा पाई और चौथे नंबर पर रही। पहले नंबर पर है बल्गेरिया। और ओपोजिशन लीडर एंगस टेलर ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में बदलाव करते हुए न्यूक्लियर ऑप्शन को त्याग दिया है। जैसा आप जानते होंगे, पिछले इलेक्शंस में लिबरल पार्टी न्यूक्लियर ऑप्शन को बहुत जोर दे रही थी। न्यूक्लियर ऑप्शन को त्याग दिया गया है, फॉसिल फ्यूल्स को शामिल कर लिया गया है। कहा गया कि कोयला गैस मुख्य ऑप्शन है कीमतें कम रखने की एनर्जी की। और ऑस्ट्रेलिया का बजट भी हाल ही में पेश किया गया, नेगेटिव गियरिंग में बदलाव किया गया है। अब केवल नई प्रॉपर्टीज पर ही नेगेटिव गियरिंग होगी, और इससे 75,000 ऑस्ट्रेलियंस को घर खरीदने में मदद मिलेगी। वर्किंग ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफसेट के अधीन $250 का टैक्स कट दिया गया, जिससे कि टैक्सेबल इनकम का लेवल बढ़कर 19,950 हो गया है। $26 बिलियन की नेट सेविंग्स है इस बजट में, अधिकतर NDIS में कटौती से। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में हुई आमदनी पर केवल आधी पर ही कैपिटल गेन टैक्स था 1999 के बाद, अब 30% रह जाएगा। और हमारा कोई ऐसा टैक्स नहीं है आपके लिए, हमारे सिर्फ फरमाइशी गाने हैं, जैसे कि ये फरमाइशी गाना है जिसे हम पेश कर रहे हैं अशोक
की पसंद पर। देवानंद साहब की ये फिल्म थी बात एक रात की, बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये, जिसका है ये गाना।

नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत समझदार और बहुत आगे की सोचने वाली हैं और समाज के खिलाफ भी जाती हैं और अपनी बात पर ही कायम रहती हैं। जैसे उनका कहना है कि पैरों पैर जमीन पर और उड़ान आसमान पे, ये है वहीदा रहमान। और उन्होंने कहा सपने ज़रूर देखने चाहिए, ड्रीम ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज यू आर डेड। हुनर कोई भी बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा होता है।

88 साल की उम्र हो गई है वहीदा रहमान जी की, लेकिन अभी भी वो अपने सोशल वर्क में पूरी तरह से लगी हुई हैं। और उनकी चार सहेलियों का एक ग्रुप था, वहीदा रहमान जी थी, नंदा थी, हेलन थी, साधना थी, और ये फिल्मी दुनिया में दोस्ती की मिसाल रही हैं। और उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को हमेशा ही अलग रखा अपने प्रोफेशनल जीवन से, और कभी भी अपनी अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा ही अलग रखा अपने प्रोफेशनल जीवन से और कभी भी अपनी अपने परिवार के सदस्यों

और अगले कार्यक्रम में कोशिश करूंगा कि उनके हम याद करें और उनकी बात अब तक ला सकूं। और कार्यक्रम समाप्त करने का समय अब आ गया है, आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है। महक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूजे का ध्यान रखें। और अगले सप्ताह तक के लिए मुझे सुखदेव जसवाल को आगे दीजिए और सुनिए ये अंतिम गाना जो आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म है चौधरी का चांद।